0: Well, we're beginning the bulletin with our focus on Tushar Sharma's dowry death case. Now, this is the latest that we are getting to know on that very case. Manhunt has been on for Tushar's absconding husband. And this happens to be the case since the very first day. He has been missing from the very picture. Cops increased the reward on the husband to 30,000 rupees now. Earlier, the bounty on Tushar's husband was just 10,000. Now the MP government is to push for a CBI probe as well into the case, as has been demanded by the parents of Tushar Sharma, the family and friends, that an independent investigation is needed into this very case. Tushar's family met with Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, an attempt that they've been making since day one of this case coming to light. Ravish Pal joining me on the broadcast with more details on the same. Ravish, a very good morning to you. Sabse pehle, Tushar ke jo husband hai, wo khud ek advocate hai, Samarth Singh unka naam hai. Un par abhi tak 10,000 rupay ka bounty tha, ab 30,000 rupay tak us rakam ko badha diya gaya hai. Par Samarth ke jo family members hai, क्या उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है कि उन्हें पता है कि वो कहाँ है और क्यों गायब है? अगर वो सही में गिल्टी नहीं है इस पूरे केस में, तो वो भाग क्यों रहा है?
1: बिल्कुल, यही सवाल हमारा भी था उनकी माँ गिरिबाला सिंह से जब हमने बात की थी कि आपको एक जज है, आपका बेटा वकील है, आपको कानून में यकीन होना चाहिए, तो फिर आखिरकार जब आप ही कानून जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप खुद कानून तोड़ क्यों रहे हैं और क्यों आप भाग रहे हैं? अगर आप सही है तो आपको सामने आना चाहिए। हालांकि इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही इनके एडवोकेट ने कोई जवाब दिया था। हमने ये भी पूछा था कि क्या समझ से आपकी बात हुई है फरारी के दौरान, तब भी उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक है कि समर्थ जो है वो शायद मध्य प्रदेश में ना होकर कहीं बाहर भी हो सकता है, और इसीलिए पुलिस ने फिलहाल इनाम की रकम को बढ़ाया है, 10,000 से बढ़ा करके उसे 30,000 रुपए फिलहाल कर दिया गया है। और पुलिस को शायद उम्मीद है कि 30,000 रुपए अगर इनाम बनाया गया है तो शायद उसकी सूचना कहीं से कहीं पुलिस के पास आए और हो सकता है कि पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ने में कामयाब हो। क्योंकि देखिए, अब तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं तिशा की मौत को, 12 मई को उसकी मौत हुई थी, आज 21 मई है। समर्थ एम्स अस्पताल तक गया था, उसके बाद से समर्थ फरार हो गया था। तो अब तक क्योंकि फरार है, पासपोर्ट जब्त करने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है, लुकआउट नोटिस भी जारी है, इनाम भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन पुलिस खाली हाथ है। और जिस तरीके से अब सेकंड पोस्टमार्टम भी फिलहाल कोर्ट की तरफ से दिल्ली एम्स का जो एप्लीकेशन दिया गया था फैमिली की तरफ से तिशा की, वो भी कैंसिल हो गया है। और अब समर्थ के सामने एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द वो कानून के सामने आए, सरेंडर करे या पुलिस उसे गिरफ्तार करे। क्योंकि जितने दिन अब समर्थ फरार रहेगा, कोर्ट के नजरों में उतना ही जो समर्थ है वो एक गंभीर अपराधी बनता जाएगा।
0: जी रवीश, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, पर आप हमारे साथ बने रहे। व्यूअर्स, देयर इज मोर न्यूज दैट वी आर लर्निंग अबाउट इन दिस केस, लेट्स क्विकली टेक अ लुक। NCW seeks action taken report from Madhya Pradesh government. The National Commission for Women has taken suo motu cognizance of this very case involving the suspicious death of 33-year-old Tushar Sharma, a resident of Noida who was living in Bhopal at her in-laws. The commission's chairperson, Vijaya Rahatkar, has written to the chief secretary and the director general of the police of Madhya Pradesh, directing them to conduct an immediate, impartial and transparent investigation into the matter. In this regard, the commission has sought a detailed action taken report within 7 days. The commission has requested information regarding the entire course of action taken, which includes the very arrest of the absconding accused, the seizure of passports and details concerning CCTV footage and the post-mortem report. Additionally, directives have been issued to ensure the safety and security of the victim's family. This is where it stands in terms of how the NCW now also enters the picture and has taken suo motu cognizance of the very case. Ravish Pal continues to be with us. Ravish, NCW abhi is pure case ko dekh rahi hai. उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है इस केस का। जो जब फैमिली से बात हुई थी, जब तुषा के पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि ना वो सिर्फ ये केस लड़ रहे हैं पर उनके अब सर्वाइवल पर खुद बात उठ चुकी है, क्योंकि जो दूसरी तरफ है जिनके खिलाफ ये केस है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और जिसकी वजह से वो ये भी कह रहे थे कि वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू का ये रिपोर्ट जो की जो मांग उन्होंने रखी है पुलिस के सामने, इसका इन्वॉल्वमेंट और इसका ये डिमांड हम कैसे देखते हैं, और तुषा को इस केस में कैसे हेल्प कर सकती है?
1: देखिए, एक बड़ी बात है जिस तरीके से एलिगेशन लगाए थे कि काफी ज्यादा इन्फ्लेशन था जो तुषा के इन्वॉल्व है, तो उसको देखते हुए लगातार यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां से उनको सपोर्ट मिलना भी शुरू हुआ है। एक सर्विस मैन भी उनके सपोर्ट में आए हैं, और इस बीच में कल रात को एनसीडब्ल्यू ने जो नोटिस जारी किया है ये दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी को जारी किया है, और उनको कहा है कि वो इस बात को श्योर करें कि फैमिली को जल्द से जल्द न्याय मिले, उन पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो। और इसके साथ ही एनसीडब्ल्यू ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है डीजीपी को, उन्होंने कहा है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है या और भी जो एविडेंस है, उन्हें बेहतर तरीके से जो है कड़ियों को जोड़ा जाए, इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन हो, समर्थ अरेस्ट हो, और इसकी रिपोर्ट जो है वो एनसीडब्ल्यू को भी दी जाए। तो कहीं ना कहीं अभी ये लग रहा है कि ये मामला जो है अब ये तीसरा का जो ससुराल है यानी गिरिबाला सिंह और समर्थ उनके गले की फांस बनता जा रहा है, और जैसे जैसे जितने दिन से बीतते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा जो सवालों के घेरे में तीसरा का ससुराल आते जा रहा है।
0: जी रवीश, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट वी ब्रिंग टू यू इन दिस वेरी केस, बट लेट्स टेल यू व्हाट्स बीन द एंटायरिटी ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट्स टेकन प्लेस इन द लास्ट 24 आवर्स राइट बिफोर दिस। इट्स अ बिग सेटबैक फॉर त्विशा'स पेरेंट्स बिकॉज द भोपाल कोर्ट डिसमिस्ड द फैमिली'स प्ली सीकिंग अ सेकेंड पोस्टमार्टम वाइल ऑल्सो नोटिंग दैट द बॉडी कैन बी प्रिजर्व इन द अवेलेबल फैसिलिटीज विद इन भोपाल इटसेल्फ। द विक्टिम्स किन हैव अलेज्ड लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। Meanwhile, India Today accessed त्विशा'स पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज कन्फर्म्ड हैंगिंग एज द कॉज ऑफ डेथ। Findings indicate the pressure-related bleeding in the neck muscles along with swelling and congestion in the lungs. And the report also notes the presence of multiple blunt force injuries on the very body. However, doctors didn't find any weapon-related injuries so far. Earlier, Tushar's parents met Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, who assured full government support in this entire matter. The state government also indicated that it would approach the CBI for a more detailed investigation into the very case. On the other hand, the National Commission for Women have now taken suo motu cognizance of the case and has sought an action taken report from the state government within 7 days.
2: PM report expert ki report hoti hai, to isi pe hum rely karte hain. Uske anusar ye mamla antemortem hanging ka hai, yani ki ye suicide ka mamla hai. अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी।
3: न्यायालय द्वारा पार्शली हमारा एप्लीकेशन अलाउ करा गया है, और पार्शली एप्लीकेशन अलाउ करके ये SHO को निर्देशित करा गया है कि आप तुरंत तत्काल रूप से तुषा शर्मा की जो बॉडी है उसको प्रिजर्व करें, -80 डिग्री हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में वो बॉडी बच सके, जिसका सेकेंड पोस्टमार्टम हो सके, आप उस बॉडी को तुरंत प्रिजर्व करें और तत्काल रूप से न्यायालय को सूचित करें।
4: सेकेंड पोस्टमार्टम को कोर्ट ने माना या स्वीकार नहीं किया?
3: नहीं, कोर्ट ने हमारी जो प्रेयर थी सेकेंड पोस्टमार्टम की उसको दिल्ली एम्स से नहीं करा सकते, हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है, कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन उनको डायरी देखने के बाद, केस डायरी देखने के बाद, हमारे तर्क, हमारी एप्लीकेशन देखने के बाद, उनके द्वारा ये पार्शली अलाउ करा गया एप्लीकेशन, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी लगती है कि सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसलिए तत्काल रूप से SHO को निर्देशित करा है।
4: अलाउ क्यों किया सेकंड पोस्टमार्टम उन्होंने?
3: अब सर अब उस ऑर्डर मिल जाए कॉपी, हम उसका अध्ययन करेंगे और जो भी लीगल कोर्स है आगे हम करेंगे।
0: Viewers, on that note, let us quickly take you through Tvisha's postmortem report, the first one that's been done so far. and that India Today has now accessed. What does it reveal so far? Finding number one confirms that hanging is the cause of death for Twisha. Finding number two is the fact that neck muscles showed pressure-related bleeding. Because remember, the family had said that they had to take down the body. They found her in a hanging state and they had to bring her down. And then there is that CCTV footage of her being carried down the staircase as well within the in-laws' house itself. Finding number three, multiple blunt force injuries which were found on the body. That does remain to be a question mark, an eyebrow-raising point as to why were there multiple blunt force injuries on the body if she had hung herself. Finding number four, no weapon-related injuries were found by doctors so far, which rules out the fact that there wasn't any sharp objects that were used at her, at least during this very episode. Finding number five, swelling and congestion that was seen in her lungs. Oftentimes, that also happens because of asphyxiation, but then that is, again, not revealed as to the cause behind that very congestion in the lungs. Finding number six, no major sexual assault signs were detected. So there was no case of sexual assault or harassment that was, however, found, especially going by the post-mortem report. But remember, this post-mortem report is the same one

0: देश के प्रधानमंत्री से भी माफी मांगना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी से भी माफी मांगना चाहिए।
1: On that note, let's quickly listen in to what Rahul Gandhi actually had said about the Prime Minister yesterday itself, which led to these very remarks coming in from the BJP leader.
2: धन्यवाद करता हूँ, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप यहां जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहिए।
1: On the other hand, there was another controversy that took over yesterday itself, and this was not just a controversy, this was politics over a phenomena that took the entire country and to an extent even the world by a whirlwind. The Modi-Melanie-Melody moment turned a simple diplomatic gesture into a full-blown internet sensation. While supporters saw it as a soft diplomacy with a human touch, the opposition dismissed it as misplaced optics and even cringe amid economic concerns back home. It's a simple toffee, a viral moment, and now that's blown into a political debate. Here's the full story. Take a look.

0: नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे आप देखना क्या होता है, वापस आएंगे आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट्टी करवा दो, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना,
1: पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉपिक आ रहे हैं। ये है हालत देश की।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Hum design and develop in India and Italy and deliver for the world ke siddhant par aage badhenge. Fashion se lekar fintech tak, leather se lekar logistic tak, mobility se lekar manufacturing tak, har kshetr mein hum apni taakaton ko jod kar पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे. इंडिया यू एफटीए के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं. हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके. फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है. एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Well, we have some news just coming in at this point in time. We are going straight across to these pictures coming in from Jaipur at this point in time of the Congress party that is holding a protest. This has got to do with the NEET paper leak controversy and the opposition up in arms right here. Now, the Rajasthan Congress is protesting. And also members of the NSUI. We will be getting more details on that story. But these are concerns being raised by the opposition as far as the NEET paper leak is concerned. The Congress is holding a dharna at this point in time, demanding answers from the administration and from the government on the mismanagement of NEET. NSUI, which is the students' wing of the Congress party, has been holding these protests now, seeking answers from the Union Education Minister. Let's take a listen.
1: नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी संख्या में आज कांग्रेस ने यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया है. ढाई साल में कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली है, प्रदर्शन है, जहां पर महिलाएं भी दिख सकती हैं आपको किस तरह से यहां पर प्रदर्शन का क्रम जारी है. लगातार कांग्रेस मुख्यालय से निकले हैं, यहां पर पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, ये बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ, और लगातार यहां पर पुलिस से धक्का धुक्की हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को. देखिए, नीट ऐसा प्रकरण है कि सीकर से ही इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई है, जयपुर से ही, और जिस तरह से 3 मई को ये पेपर लीक हुआ था और उसके बाद 3 मई के बाद सीधे ये जो है 12 मई को मुकदमा दर्ज हुआ, इसे लेकर लगातार ये पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है. पानी डाला जा रहा है यहाँ पर. कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है. जयपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, और ये जो कांग्रेस के नेता है ये सारे यहाँ पर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे. वाटर कैनन के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बैरिकेड पे चढ़ने लगे थे. देखिए, नीट एक बड़ा मुद्दा है. जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार गई थी पेपर लीक के मसले पर, 18 में से 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुई थी कांग्रेस सरकार में. बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को ये एक ब्रह्मास्त्र मिला है कि किसी भी तरह से पेपर लीक के मुद्दे को अब बीजेपी के खिलाफ भुनाया जाए और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में ये मुकदमा जो दर्ज होने में देरी हुई है, बड़े लोगों को बचाने का जो आरोप लग रहा है, इन सारे आरोपों के बीच इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, जहाँ पर बैरिकेडिंग से उठा उठा कर नीचे फेंक रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और लगातार जो है कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सबकी मांग है, इसकी मांग जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई जिस तरह से जांच होनी चाहिए उसकी जांच नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं. लगातार कई वाटर कैनन के जरिए पानी का प्रयोग करके तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, मगर चूंकि गर्मी का मौसम है इसलिए पानी की वजह से ये भीड़ तितर बितर नहीं हो पा रही है. जयपुर में काफी ज्यादा तापमान है, इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, और पुलिस बल जो है इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही कर रही है. पानी की बौछारों के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया जाए, लेकिन बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भीड़ लेकर आए हैं, जो यहाँ पर पानी के जरिए पानी के फोर्स के जरिए इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है. ये सारे के सारे जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है. तीन लेयर की पुलिस की बैरिकेटिंग की गई है, और तीन लेयर की पुलिस की बैरिकेटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं, टीकाराम जूली, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महिला ब्रिगेड है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उठा उठा के इन्हें ले जाया जा रहा है, महिला कार्यकर्ताओं को जो नीचे गिर चुकी है आगे.
2: धर्मेंद्र मोदी इसकी बीजेपी के लोगों इस्तीफा दो। अरे राहुल गांधी ने 2024 में कहा था नीट के पेपर चोरी हो रहे, लोकसभा में चर्चा कराओ, नहीं कराई। चोर बीजेपी चोर, धर्मेंद्र प्रधान चोर, मोदी चोर, मोदी सरकार चोर।
1: देख सकते हैं गोविंद सिंह,
3: लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करा दर्ज करा रही है, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके हमारी महिला नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार आगे आके इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जब जाके इन बच्चों के भविष्य को जो इन खिलवाड़ है उसको कुछ राहत मिल पाएगी।
1: सीबीआई जांच हो रही है,
3: सीबीआई से कुछ नहीं होगा, इससे पिछले पेपर का क्या हुआ, वो सीबीआई को जांच को दी थी, वो अब तक उसका रिजल्ट नहीं है कुछ भी। सीबीआई
1: तो इस तरह से देख सकते हैं पुलिस जो है लगातार इन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है और पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए, वाटर कैनन के जरिए भीड़ को थोड़ा सा पीछे ढकेला गया है और इसके बाद यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है जहाँ पर नीट के मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ युद्ध का मैदान बना हुआ है। यहाँ पर मुकेश भाकर को देख सकते हैं किस तरह से कंधे पर चढ़कर बैरिकेडिंग तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति जयपुर में पिछले आधे घंटे से बना हुआ है जहाँ कांग्रेस मुख्यालय से लेकर अब तक लगातार प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का। कांग्रेस मांग कर रही है कि सीबीआई इस जांच को ठीक से नहीं कर रही है, जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए। जी
0: Probably getting in those details at this point in time. Reporting from Jaipur city with the Congress protest is underway as we speak. They're protesting on NEET matter in Jaipur, seeking accountability from the BJP government at the center and saying that it's time for the education minister, Dharmendra Pradhan, to resign. That's what the Congress is now saying that this had been going on for a while now and that the Congress had, in fact, listen in.
2: 24 में कहा था कि नीट के पेपर चोर हो रहे हैं, आप चर्चा कराओ, नहीं कराए। युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया, कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी यह कर रहे थे।
0: Right, these are pictures coming in from Jaipur where the Congress is protesting and moments of chaos as evident with, in fact, the Congress sitting on a dharna. It's extremely hot. And like our reporter was saying, but in spite of that, the Congress workers have gathered seeking answers from the government in the NEET paper leak. The retest ordered already, but saying that this has been happening again and again and that it's a failure of the administration and the failure of the government, and that's the reason why the Union Education Minister must resign.
4: The Congress has led a massive protest in Jaipur against the NEET paper leak case accused, demanding action in the matter, and you can see hundreds of Congress people who have gathered out here to protest. In fact, several barricades have been put up out here to stop Congress people from moving towards the BJP office. You can see a face-to-face confrontation between the police and the Congress workers out here. The Congress workers have clearly outnumbered the police personnel out here, and despite several of the barricades being in place, the Congress workers have been trying to ensure that they get to the other side. You can see hundreds of Congress workers right now who are trying to get to the other side of the barricades towards the BJP office and demanding that action be taken in the NEET case, and also demanding accountability, demanding that the The Union Minister, Union Education Minister Dharmendra Pradhan submit his resignation, and you can see all of these Congress workers who are right now out here to protest, to demand that the BJP be made accountable, the Union government be made accountable in this matter. Already wheat has been an ongoing matter in Rajasthan where the Congress has been protesting, and now you can see all of these Congress workers out on the streets. We'll try to get in a few voices. आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं आज, क्या मांगे आपकी?
5: हमारी मांगे हैं छात्रों के साथ अभी जो हुआ है इसको वापस ले और चुनाव कराए, छात्र विरोधी ये सरकार इस्तीफा दे, विरोधी सरकार है अभी भी।
4: You can see there is a direct confrontation between the police personnel and the Congress worker.
5: जो लीक हुआ है उसमें इस्तीफा दे, छात्रों के साथ न्याय कराए और महिलाओं के साथ न्याय हो, आरक्षण करो, आरक्षण विरोधी ये सरकार।
4: Well, you can see all of these Congress workers who are out there, and there is a clear attempt by the Congress workers to ensure that their voice is heard. The police has been making use of the voice of the water cannons, but despite that, the Congress workers have not backtracked much, and out here, the attempt clearly is to ensure that these people, the Congress workers, are pushed back. In fact, several senior Congress leaders, including the state Congress chief Govind Singh Dotasra, the leader of opposition in Rajasthan Assembly, Tika Ram Julie, former Union Minister Pratap Singh Khacharewas, along with thousands of Congress workers have arrived out here. And you can see all of them who have been protesting, demanding that the Union Education Minister Dharmendra Pradhan submit his resignation in the matter. Out here at the protest site, the Congress has been demanding justice, the Congress has been demanding action, claiming that lakhs of NEET students have been affected by the NEET paper leak case, and there and the manner in which the entire case has surfaced. You can see multiple layers of barricades on the other side. There is the use of water cannon that has been done from the other side, and you can see all of these police personnel that have been put in place to ensure that the Congress workers do not cross to the other side where the BJP headquarters is there. And you can see all of these Congress workers out here who have been protesting and demanding that justice be given, that those accused, those involved in the paper leak case be punished, that the Union Education Minister Dharmendra
0: Pradhan. My colleagues Dev, Ankur and Sharad getting in those details from Jaipur city, where the Congress party is protesting as we speak, seeking answers from the BJP-led central government and also the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan. We will be, viewers, continue to get you more details on that story that we are tracking, the NEET paper leak and the kind of controversy it has generated, political and otherwise. Much more news continues on the other side with my colleague Suyesha Samant.
6: You are watching India Today.

0: धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे ही सवाल पे कह दिया था कि उसमें विपक्ष के मेंबर हैं, उसकी फाइंडिंग्स कैसी होगी, वो कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे जवाब देते वक्त।
1: ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। जब आदमी के पास अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जगह नहीं मिलता है, सवालों का जवाब नहीं होता, तो इस तरह के उलझुल बातें करते हैं। लेकिन पीड़ादायक है कि ये शिक्षा मंत्री खुद कर रहे हैं। हर कमेटी में अगर बात, एक तो कमेटी जो भी होती है किसी पार्टी के लिए नहीं काम करती है पहली बात, और अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो उनको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हर कमेटी में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है। जिसकी सरकार रहती है तो प्रोपोर्शनेट नंबर नॉमिनेट होते हैं, तो उस कमेटी में भी मेजॉरिटी इन्हीं के लोग हैं, फिर ये क्या मतलब बोलना चाहते हैं?
0: क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हेड करते हैं।
1: नहीं, दिग्विजय, कोई चेयरमैन अपने आप रिपोर्ट नहीं बनाता है। जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है तो सबके सामने रखा जाता है, डिसेंट नोट होता है, जो आदमी डिलीट करवाना चाहता है वो होता है, डिस्कशन होता है। ये नहीं कि कोई चेयरमैन है तो अपने आप रिपोर्ट बना लिए। जब तक मैं सहमत नहीं हूं तब तक वो रिपोर्ट नहीं बनेगी, मैं डिसेंट नोट दूंगा। इतना बेसिक सेंस और कॉमन सेंस तो होना चाहिए जो उनके पास है, लेकिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, साबित हो चुके हैं कि वो इस लायक नहीं है, तो इस तरह कुछ जरूर बयान दे रहे हैं।
2: ठीक है। There is a clear attempt by the Congress workers to ensure that their voice is heard. The police has been making use of the voice of the water cannons, but despite that, the Congress workers have not backtracked much. And out here, the attempt clearly is to ensure that these people, the Congress workers, are pushed back. In fact, several senior Congress leaders, including the state Congress chief Govind Singh Dotasra, the leader of opposition in Rajasthan Assembly Tikaram Julie, former Union Minister Pratap Singh Khacharewas, along with thousands of Congress workers have arrived out here, and you can see all of them who have been protesting, demanding that the Union Education Minister Dharmendra Pradhan submit his resignation in the matter. Out here at the protest site, the Congress has been demanding justice, the Congress has been demanding action, claiming that lakhs of NEET students have been affected by the NEET paper leak case, and there and the manner in which the entire case has surfaced, you can see multiple layers of barricades on the other side. There is the use of water cannon that has been done from the other side, and you can see all of these police personnel that have been put in place to ensure that the Congress workers do not cross to the other side where the BJP headquarters is there. And you can see all of these Congress workers out here who have been protesting and demanding that justice be given, that those accused, those involved in the paper leak case be punished, that the Union Education Minister Dharmendra Pradhan be asked to submit his resignation.
3: And that's all that we can pack for you in this edition of the news. On the other side is our special segment in the club, where you get to watch all that is making news in the world of entertainment. Just stay tuned to India Today.

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
2: Gone! Home run!
1: NHL.
2: Scores!
1: College basketball.
3: He shoots it immediately.
2: He makes it in!
1: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
4: One lap to go.
1: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
0: just
5: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के हमसे कहेंगे।
7: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं।
8: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Good afternoon and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathuram. We're starting this bulletin with a world exclusive news break. One of the masterminds behind the Pulwama attack, terrorist, has been assassinated in Pakistan. Pakistan's most wanted terrorist shot dead by unknown assailants. Terrorist Hamza Burhan has sustained multiple gunshot wounds and according to sources, he has died after an attack by unknown assailants in Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. Remember, Hamza Burhan is one of the men named in the Pulwama attack case. He was also somebody who had been designated as a terrorist under the UAPA several years ago. And this man has now been gunned down by unknown assailants in Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. This is breaking news that's just coming in. Hamza Burhan, who is one of the persons named as having participated in the conspiracy behind the Pulwama attack, has now been shot dead by unknown assailants inside Muzaffarabad. Hamza Burhan is dead after an attack by unknown assailants. This comes soon after the action against other terrorists in Pakistan as well. And this is Hamza Burhan. This is the information that we're bringing to you right now. The unknown gunmen have shot dead Hamza Burhan inside Pakistan. He is somebody who was named as having directed the Pehelgam terror attack from inside Pakistan. Remember, in the last few weeks alone, several terrorists had been killed in the security operations in Pakistan, and Hamza Burhan, as well as several others, have also been named in the NIA charge sheet when it comes to the conspiracy to commit the terror attack in Pulwama. The NIA had named him as one of the persons who was involved in the conspiracy. And India Today is bringing you this big exclusive. Hamza Burhan has been shot dead by unknown gunmen inside Pakistan's Muzaffarabad. Now, remember, viewers, just a short while ago, there were also other similar incidents. Sheikh Yusuf Afridi, who's a Lashkar terrorist, who was shot dead by gunmen in Pakistan just last month. We've also seen another terrorist, Amir Hamza, who was shot dead in Pakistan's Lahore. He was shot at, I beg your pardon, in Pakistan's Lahore. Former Jaish-e-Mohammed Chief Maulana Masood Azhar's elder brother, Tahir Anwar, also died in Pakistan. And these are all designated terrorists, people who've been named by Indian authorities, been named by investigation agencies as terrorists. These are most wanted terrorists who are now being attacked inside Pakistan. Of the Pulwama attack case has been now shot dead. This was one of Pakistan's most wanted terrorists as well. Hamza Burhan sustained multiple gunshot wounds and according to sources, he has died after this attack by unknown assailants in Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir. We've seen the elimination of almost eight terrorists inside Pakistan over the last few months. In 2026 alone, according to reports, several terrorists linked to outfits like Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen have been targeted by unknown gunmen inside Pakistan. Arvind Oja joins me on this story. Arvind, unknown gunmen kill Pulwama mastermind Hamza Burhan. What more can you tell us about this killing, and what more can you tell us about the role that this man has played in terrorist attacks against India?
1: देखिए, सबसे पहले इंडिया टुडे ये बता रहा है कि पुलवामा अटैक में पुल का हमजा बुरहान, ये अल बदर का कमांडर था, इसने देर पहले मुजफ्फराबाद में अपनी मां की हत्या की है। मैंने गोली मारी है और गोली मार के हत्या की है। बात की जाए हमजा बुरहान की, तो ये काफी सालों से एक्टिव था, पीओके में बैठकर लगातार अपने लोकल अपने सपोर्ट के जरिए ये लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। इंडियन एजेंसीज की निगाह में ये था, और अब से कुछ देर पहले ही हमजा बुरहान को गोली मारी है। फिलहाल जो पाकिस्तान की पुलिस है वो वहां जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इंडिया टुडे को जो सोर्सेस की जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमजा बुरहान मोस्ट वांटेड ये टेररिस्ट था अल बदर का, और 2019 पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें भी इसका रोल एजेंसियों के सामने आया था, और कुछ देर पहले इसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या कर दी। ये काफी खतरनाक कमांडर था अल बदर का। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों में हमजा बुरहान का रोल रहा है, और कुछ देर पहले ही मुजफ्फराबाद में इसकी गोली मार के हत्या की गई।
0: जी अरविंद, पुलवामा अटैक की बात करें तो हमजा बुरहान का नाम आया, और इसके अलावा भी अल बदर और हमजा बुरहान का नाम कई और टेरर अटैक्स के से लिंक करके आया हुआ है। 2020 में, 2022 में भारत ने इन अल बदर को एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। भारत ने कई बारी ये भी कहा है कि इन लोगों का काफी हाथ रहा है मल्टीपल केसेस में। तो और क्या बता सकते हैं हमें आप इस इंसान के बारे में, अब इस एजेंसी के बारे में?
1: देखिये, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिससे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है, और इसका जो चीफ है वो बख्त जदीन है, लेकिन जो पूरा जो अल बदर है एक तरीके से वो चला ही हमजे रहान रहा था, और काफी खतरनाक ये कमांडर माना जाता है हजा, और बीते सालों से एक्टिव था और पाकिस्तान में बैठकर लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिला रहा था। और जो हमारी खुफिया एजेंसी है उसको ये जानकारी मिली थी कि जो पुलवामा अटैक था उसमें भी इसकी भूमिका थी, और एजेंसी इसको लगातार वॉच कर रही थी, लेकिन सबके बीच कुछ देर पहले ही अननोन गनमैन ने इसकी गोली मार के हत्या कर दी है। फिलहाल पाकिस्तान पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की बात तो जरूर है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट था जो जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नाक में दम किया हुआ था, और खासतौर से जम्मू कश्मीर में कई सिक्योरिटी फोर्सेस पर चाहे अटैक हो, सिविलियंस पर अटैक हो, ये लगातार इस तरह की वारदातों को आतंकी वारदातों को अंजाम दिला रहा था।
0: जी अरविंद, एक और मैं सवाल करना चाहूंगी। ये पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं ये अननोन गनमैन ने कई ऐसे पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया है या अटैक किया है जो कि भारत के खिलाफ कई सालों से काम कर रहे थे। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि इतना कुछ इन्होंने हमारे देश के साथ किया और अब फाइनली कुछ इनके खिलाफ हो रहा है।
1: देखिए, ये बात सही है कि लगातार जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अलग शहरों में, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, कराची हो, वहां पर बीते दो सालों में तकरीबन 20 से ज्यादा जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और कई ऐसे मामलों में पाकिस्तान ने सीधा सीधा जो भारतीय खुफिया एजेंसी RNW है उस पर आरोप लगाया, लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में भरोसा नहीं रखता। ये भारत का स्टैंड नहीं है, ना भारत दूसरे देश में जाकर इस तरह की कोई हत्या कराता है। दरअसल पाकिस्तान में जो अलग अलग आतंकी तंजीमें हैं उनके बीच जो वर्चस्व की आगे बढ़ने की जो लड़ाई है उस चक्कर में इस तरह की जो हत्याकांड है वो हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी है वो इस तरह की हत्याएं करा रही है। लेकिन एक राहत की बात तो है, कम से कम ये बात तो इस बात को जायज अननोन गनमैन ने ये रिलीफ दिया है कि वो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान के अलग अलग सिटी में बैठकर इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज कराते थे, अब वो इंडिया पाकिस्तान में खुद को भी महफूज खुद को भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये कम से कम भारत के लिए राहत की बात जरूर है। पाकिस्तान में ये मर्डर हुआ, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी।
0: अरविंद बने रहिए मेरे साथ, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द मैन हु हैज नाउ बीन असैसिनेटेड, अर्जुमन गुलजार दार, ऑल्सो नोन एज हमजा बुरहान, ऑल्सो नोन एज विद द एलियास डॉक्टर, ही वॉज 27 ईयर्स ओल्ड एंड रेजिडेंट ऑफ खरबतपुरा इन पुलवामा ओरिजिनली। He is known as one of the associate members of Al Badr, which was designated as a terrorist outfit by India. He is somebody who went to Pakistan and joined Al Badr. He's been acting as a commander of this terror outfit, and he was found involved in multiple cases regarding recovery of explosives from overground workers. He was also found involved in the grenade attack on February 14, 2019, when a suicide bomber rammed explosive-laden vehicles into a CRPF convoy in Pulwama district and killed 40 personnel. He was also involved in a grenade attack on CRPF in Jammu and Kashmir. And he is accused of motivating youth to join militant ranks in his terrorist outfit, which is the Al Badr. Now, this man has been responsible for these attacks. This man has been responsible for attacks which triggered nationwide mourning, created diplomatic tensions between India and Pakistan, and created the need for military responses. Now, Arjuman Gulzar Dar, also known as Hamza Burhan, is dead. He's been killed by unknown gunmen just a few hours ago. And as my colleague Arvind Ojha was just saying, he was a dreaded terrorist. He was a most wanted terrorist. And this is as a series of such incidents that have happened where terrorists are now being gunned down. And as my colleague Arvind Ojha was just discussing, there seem to be falling out between various terrorist groups, and various gangs inside Pakistan-occupied Kashmir, which seems to also be one of the reasons behind this kind of attacks, which are killing the designated terrorists. But it is a big relief for India and for Indians, as one of the people responsible for a series of attacks, for a series of conspiracies to commit terror attacks in India, is now dead. Hamza Burhan, alias Doctor, original name Arjuman Gulzar Dar, he was a resident originally of Ratnipura in Pulwama. He crossed over to Pakistan and joined the terror outfit Al Badr. Remember, Al Badr has been an active terrorist group and it has been banned by the government of India since 2002. Under the Prevention of Terrorism Act and under the UAPA. Al Badr is said to have been formed originally in 1998 and has been participating in terrorist activities and secessionist activities against India ever since. On your screens right now, viewers, are the visuals that are now coming in. The spot visuals from the place where this man was gunned down on your screens right now are the visuals that we are getting for you exclusively from Pakistan. The investigation agencies, the police agency, police personnel are there. Locals are gathering. This is the visuals from the spot where Hamza Burhan was gunned down. Arvind Ojha is continuing to be with me on this story. Arvind, aur kya bata sakte hain humko is case ke bare mein? अब जो विजुअल्स आ रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है, बॉडी नजर आ रही है, लोग उसको ढकते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर हुआ, क्या हुआ, कुछ बताइए हमें, बताएं।
2: देखिए, ये मुजफ्फराबाद में ये किलिंग हुई है, अननोन गनमैन ने का ये स्ट्राइक है, ये बड़ा स्ट्राइक है। और खास की कर बात की जाए हमजा बुरहान की, तो ये अल बदर का बड़ा कमांडर, जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था ये, पुलवामा का, लेकिन कुछ साल पहले ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था और पीओके से ये ऑपरेट कर रहा था। और जो हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें इसका रोल खुफिया एजेंसियों को मिला था। इस आतंकी हमजा बुरहान, जिसे डॉक्टर भी कहा जाता है, इसके और भी अलग अलग नाम है, ये सबसे यंगेस्ट टेररिस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट डेयरिस्ट था, जो लगातार पीओके में बैठकर एक ऑफिस से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करवाना, जो लोकल लोग हैं उन पर अटैक कराना, इस तरह के ये टेररिस्ट अटैक करवाता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल और अंडरग्राउंड रहता था। कुछ देर पहले ही, तकरीबन आधे से एक घंटे का वक्त रहा होगा, जब मुजफ्फराबाद में ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कई जो अटैकर्स हैं अननोन गनमैन वो इसके ऑफिस में दाखिल होते हैं और हमजा बुरहान की गोली मार के हत्या कर देते हैं। अल बदर की बात की जाए तो भारत सरकार ने अल बदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया हुआ है और अल बदर लगातार भारत में और खास तौर से जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, वो जिस तरह से जैसे मोहम्मद लश्कर ए तोयबा को खड़ा किया था उसी तरह से अल बदर को खड़ा किया था। और अल बदर का सबसे खूंखार कमांडर हमजा बुरहान था। हमजा बुरहान चूंकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जाहिर सी बात है ऐसे में जो लोकल नेटवर्क है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत था, लोकल कनेक्शन यहाँ पर था। ये बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था और मुजफ्फराबाद में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगातार जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहा था। और अब से कुछ देर पहले ही अननोन गनमैन ने इसे कई गोलियां मारी हैं इसके ऑफिस में और इसकी मौत हो गई है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा, ब्रिंगिंग अस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन गेट फॉर यू फ्रॉम पाकिस्तान, वेयर दिस मैन हु इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हु वाज ए कमांडर ऑफ द अल बदर टेररिस्ट आउटफिट, हु हैज बीन अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय इंडिया सिंस 2022, हैज नाउ बीन किल्ड। But it's time now for us to go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the updates of the markets. Sakshi, over to you.
3: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
4: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSC advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSC.
5: Presented by National Stock Exchange.
4: See.
5: Presented by National Stock Exchange.

0: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए हमारा एसएचओ को निर्देशित करा है कि आप बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो हर संभव प्रयास करें और हमको सूचित करें. तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट, उनके पास पूरी डायरी थी, पूरी डायरी उन्होंने अवलोकन करा और उनको भी ये लगता है कि हाँ सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है दिल्ली एम्स भेजना, इसलिए केवल इस आधार पर उन्होंने मना करा है. लेकिन विक्टिम का जो परिवार है उसको ये लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की आगे जाँच हुई, क्योंकि यहाँ सब शुरू से डिटेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हर तरीके का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए हमारे पास अब हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं है. तो उस ऑर्डर को हम हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं. और तीसरा सर, विक्टिम की पीड़िता के परिवार द्वारा कुछ नंबर कल जारी करे गए थे, उन नंबर्स किसके हैं और ऐसी घटना, इतनी सीरियस घटना घट गई और उसके बाद ये अब विक्टिम के परिवार से बातचीत ना करके, उनको जानकारी ना देके किन लोगों से बात कर रहे थे, लगातार संपर्क में थे, उनका ऐसा आरोप है कि उसमें कोई सीसीटीवी वाला है जिससे इनने बात करी है, ऐसा पीड़िता के परिवार का आरोप है. तो उसकी सत्यता जानना जरूरी कि ये नंबर्स किनके हैं, इनके मालिक कौन है. कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, चाहे वो बेल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है और इन नंबर से हो सकता है हमको कोई जानकारी प्राप्त हो.
3: केंद्रीय एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे ही सवाल पे कह दिया था कि उसमें विपक्ष के मेंबर हैं, उसकी फाइंडिंग्स कैसी होगी, वो कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे जवाब देते वक्त.
4: ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं. जब आदमी के पास अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जगह नहीं मिलता है, सवालों का जवाब नहीं होता, तो इस तरह के उल जुलूल बातें करते हैं. लेकिन पीड़ादायक है कि शिक्षा मंत्री खुद कर रहे हैं. हर कमेटी में अगर बात, एक तो कमेटी जो भी होती है किसी पार्टी के लिए नहीं काम करती है पहली बात, और अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो उनको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हर कमेटी में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है. जिसकी सरकार रहती है तो प्रोपोर्शनेट नंबर नॉमिनेट होते हैं, तो उस कमेटी में भी मेजॉरिटी इन्हीं के लोग हैं. फिर ये क्या मतलब बोलना चाहते हैं,
3: क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हेड करते
4: हैं. दिग्विजय, कोई चेयरमैन अपने आप रिपोर्ट नहीं बनाता है. जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है तो सबके सामने रखा जाता है, डिसेंट नोट होता है, जो आदमी डिलीट करवाना चाहता है वो होता है, डिस्कशन होता है. ये नहीं कि कोई चेयरमैन है तो अपने आप रिपोर्ट बना लिए. जब तक मैं सहमत नहीं हूं तब तक वो रिपोर्ट नहीं बनेगी, मैं डिसेंट नोट दूंगा. इतना बेसिक सेंस और कॉमन सेंस तो होना चाहिए जो उनके पास है, लेकिन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, साबित हो चुके हैं कि वो इस लायक नहीं है, तो इस तरह को जरूर बयान दे रहे हैं.
5: You are watching India Today.
6: Welcome to the 4 p.m. bulletin from India Today's newsroom. Always bustling, busy, getting you all the updates from India Today's newsroom. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines. Big exclusive from India Today. One of the mastermind of the 2019 Pulwama attack, killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Kashmir. Hamza Burhan, known as Doctor initially, sustained multiple bullet injuries. He was attacked in Muzaffarabad. Three ministers inducted to Vijay Cabinet, 21 TVK and two Congress ministers, 33 member Vijay Cabinet in Tamil Nadu. High drama at Vijay Cabinet Oath. Congress MLAs cheer Kamaraj, Rahul, Rajiv, long live Rahul chanting by Tamil Nadu Congress ministers. Governor admonishes, says chanting is not part of the oath ceremony. Tamil Nadu cabinet expansion starts with Vande Mataram before Tamil anthem. DMK fumes, says Vijay let Tamilians down. Claims chief minister couldn't stand up to the centre. Bengal chief minister makes Vande Mataram in madarsas mandatory, says all previous orders stand cancelled. National song mandatory in madarsas before classes. Manhunt on is for Twisha's absconding husband. Cops increase reward on husband to 30,000. Mother-in-law faces action. Giribala set to be axed as Consumer Forum judge. And our final headline at the 4 p.m. bulletin. NET whistleblower claims silenced by the Sikar top cop. Claims police in action from 3rd of May to 7th of May. Claims deliberate bid to delay the probe. NTA chief appears before parliamentary panel.

जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है जिस प्रकार से वो गाली गलौज पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं।

0: of domestic work in India lies at the intersection of dignity, regulation and respect.
1: महीने का 10,000 से ऊपर आज तक अपने लाइफ में नहीं कमाया.
2: जैसे हम मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं हमें मिलता है.
0: Workers are redefining their place, driven by app-based services and on-ground support from platforms.
1: ऑनलाइन जाने का सोचा कभी तुमने?
3: ऑनलाइन में क्या है, मतलब जाओगे तो सब ही काम करने पड़ेगा.
4: पहले काम करते थे जहाँ पे, वहाँ पर हमें उतनी इज्जत नहीं मिलती थी.
0: The question is not whether change is happening, but whether it will be enough.

में एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, यह हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए। कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।

0: The plight of LPG shortage has now pushed citizens out of their homes. In UP's Gorakhpur, people have been compelled to spend their nights out on the streets, sleeping in queues to procure a gas cylinder. Families are spending nights on the roadside, guarding empty cylinders like valuables, terrified of losing their spot in the line. People in queues say they have been doing this for multiple days and have still returned home empty-handed.
1: ये सर ये हर महीने यही मतलब है इस तरह जाम लग रहा है गैस नहीं मिल रहा है हम लोग आने पे तीन तीन दिन चार चार दिन मतलब वापसी हो जा रहा है अब पता नहीं क्या आज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा ये तो कोई ठीक नहीं
2: हम पांच बजे से लाइन में लगे हैं समस्या यही है कि हम पांच बजे आ गए मगर मिला नहीं है
0: While authorities insist there is no crisis, residents are questioning the claim.
3: बहुत दिक्कत होता है
4: कैसे खाना ना बन रहा है
3: खाना कैसे बन रहा है खाना बनाओ लकड़ी पर आंख में धुआं जाता है आंख दर्द करने लगता है सारा पानी गिरता है आंख से
0: Amid scorching heat under swarms of mosquitoes inadequate supply of gas is forcing many to stand in queues for hours on end With Gajendra Tripathi Bureau Report

0: केंद्रीय एजुकेशन शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे ही सवाल पे कह दिया था कि उसमें विपक्ष के मेंबर हैं, उसकी फाइंडिंग्स कैसी होगी, वो कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे जवाब देते वक्त।
1: ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। जब आदमी के पास अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जगह नहीं मिलता है, सवालों का जवाब नहीं होता, तो इस तरह के उलझुल बातें करते हैं। लेकिन पीड़ादायक है कि शिक्षा मंत्री खुद कर रहे हैं। हर कमेटी में अगर बात, एक तो कमेटी जो भी होती है किसी पार्टी के लिए नहीं काम करती है पहली बात, और अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो उनको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हर कमेटी में मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसकी सरकार रहती है तो प्रोपोर्शनेट नंबर नॉमिनेट होते हैं, तो उस कमेटी में भी मेजोरिटी इन्हीं के लोग हैं। फिर ये क्या मतलब बोलना चाहते हैं?
0: क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हेड करते हैं।
1: नहीं, दिग्विजय, कोई चेयरमैन अपने आप रिपोर्ट नहीं बनाता है। जब कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है तो सबके सामने रखा जाता है, डिसेंट नोट होता है, जो आदमी डिलीट करवाना चाहता है वो होता है, डिस्कशन होता है। ये नहीं कि कोई चेयरमैन है तो अपने आप रिपोर्ट बना लिए। जब तक मैं सहमत नहीं हूं तब तक वो रिपोर्ट नहीं बनेगी, मैं डिसेंट नोट दूंगा। इतना बेसिक सेंस और कॉमन सेंस तो होना चाहिए जो उनके पास है, लेकिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, साबित हो चुके हैं कि वो इस लायक नहीं है, तो इस तरह को जरूर बयान दे रहे हैं।
0: ठीक है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

में एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, यह हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए। कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सब इसे सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।